कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला, सुने गुंग जो याहि सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह है, हो जो या की एक बार चौपई को कह है चौपई, संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय, भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक न जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो, दोहु राम।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध्या वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही दे किन डिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े। आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासा नाल निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रचिया रहाय। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान।

इस रीरा मेरिया इस जग में आई कै क्या तुद कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया कहे नानक ए शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया सो कहो टल गुर सेवी एहनिस।

परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा।

करै सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली प्रभु मिलाप वाली अवस्था नाल उसकी जान पछाण हो जाती है। ये जग उसनों प्रभु की बनाई हुई एक बगीची जापती है,

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते पारों पकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गलबात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समां नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, उह गुरुद्वारे जा के की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तों वध जिन्नियां वी जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी, पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहिंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया, मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ये हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरिया अखा नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रबाबियां दी, पुछी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रबाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हां, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हां, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी होई हां, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

पच करम से भी ये सच्चा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच कर्म से भी ये सच्चा।

0: सन कीन रूपन एक
1: खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक
0: दे पेव ना जाने जे वेद और कतेब
1: रूप रंग ना जात पाछो जानिए के जेब
0: आत्मा ना जात जग जन मन बिहीन।

0: भगवती संत वह प्रसाद कथते के आछिज देसे के आबिज बेसे
1: के आगंज कर में के आपन पर में
0: के आबिज लोके के आदित सुख
1: है के दूत बनने के प्रभुत करने
0: के राजन प्रभा है कि धर्मंग तू जा है
1: के अशोक बनने के सरपा परने
0: के जतन करती है कि छत्रन छत्री है
1: के ब्रह्म स्वरूप है के अनुभव रूप है
0: के आद देव है कि आप बेव है
1: के चित्र में है
0: के रोजी रजा के रहीम में रहा के गुलगुना है कि साहन शाह है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है
1: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है
1: के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
1: है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र काल है
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है
1: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है
0: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य
1: है के सर्वत्र जाग्य के सर्वत्र काव्य
0: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है
1: के सर्वत्र इंद्रिय के सर्वत्र तन है
0: के सर्वन कली में के परमन फहीम
1: है
0: के हुस्नल वजू है तमामल रजू है
1: हुस्नल
0: मूल शिक्षा

कुछ स्वरूप है अचिज है अछूत है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है लेख है अजय है अभय है पूत है अतूत है पकत है प्रकत है नाश है

0: सर्वं गन्ता
1: सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं प्रसावलचं त्वया प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे परमात्मं परमात्मं सदा सर्वसत्त्वे।

0: पालो पालो तू।
1: भगवती चांत है प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है।
0: हमें सुन सलाम है समस्त कलाम है।
1: साहेब दिमाग है के हुस्नल चराग है।
0: कामल करीम है के राजक रहीम है।
1: रोजी दिहंद है के राजक रहिंद है।
0: करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है।
1: गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है।
0: हरीफुल शिकान है रियासल फिकान है।
1: कलंकंक बनास है समस्तुल निवास है।
0: समस्तुल
1: जुबा है के साहिब की राह है।

0: आंगन मान मलेंगे,
1: श्री भगवान कृपा विद्या जहान निदान चलेंगे।
0: निरपार बड़े बरियारे बेचारे सार की तार बचैया,
1: तोर देश मलिन मवासन मते जान के मान मलैया।
0: अरे गरान के तोर नहा सो बात नहीं चक चार लवैया,
1: साहिब श्री सब को सरनायक जाच।

0: साहे प्यारे
1: भीम बन लुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्म भवतर काल पाए शिव जीव अवतर
1: काल पाए कर विषम प्रकाश सकल काल का किया तमसा
0: काल जोगी शिव की ओ वेद राज में मो ज्योति ओ
1: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा
0: काल सब जग पदायो देव देश बजायो
1: आदि के अवतार सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार देसी कुमारी सुकुब राज नाम सवारी
1: शिव गुण को शिव गुण सुखदियो सतरन को बल मोहबत कियो
0: आकाश के अंदर की जाने थुले बड़े की पेर पिछाने
1: चीटी ते कुंचर सुला सब पर कृपा दृष्टर फूला
0: दुख पाए की सुख पाए सुरंगे

0: बुरा जवन बाप परे प्यारे दिन के तुम संकट सब डारे
1: कोई बात आए है ताके काम नहीं आए
0: रचाओ दाए सब काला दुष्टर शितर तत्काल
1: दर्शन जाए न रो ताके ताप निंगवार हो
0: रिद सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाछ सके ना कोई
1: एक बार जिंद में सुमारा का

0: करियम वजगमत कंस करा पूर्ण सबराता
1: किरमि सकल दे को हरदा दुष्ट दोखियन को जय करता
0: सिय सृजब दे दियाला पूर्ण ग्रह गंत काला
1: मन बाजत फल पाए सोई दुख न से प्रयापत कोई अढिल
0: स्नेह जो यास रसना पावे स्नेह।

0: करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे
1: सला सिलसिला तेरी नाम मन विसावे
0: नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे
1: है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
0: साचा नाम मेरा आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया
0: कर सांत सुखमन आए वसिया जिन इच्छा

0: जिन सत जिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवे हारे।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे करनी कमाणी।
0: मूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा।

0: सोतत पाए जिसनु अंदिन हरिम लागे जागत रैन विहानी।
1: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये,
0: मनो क्यों विसारिये विरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
1: उसनु कहे पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे,
0: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये।
1: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये,
0: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
1: माया अगन सब एको जे ही करता खेल रचाया,
0: जातिस पाना ताज म्या परवार पला पाया।
1: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया,
0: ए माया जिसे मोह जे भाव दुजलाया।
1: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्ने विचे माया पाया,
0: हर आप मुल के मुल न पाया जाए,
1: मुल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
0: ऐसा सतगुरु जे मिले जिसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए,
1: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
0: हर आप

सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत उचिते जा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही ने किन रिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुल

आतम रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वस है मिरहियर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख ही जन के चरण वस है मिरहियर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हां दे साहो जिस पास

सेवक दी संतोख जन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैर न रखे उन कर सुकर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देवे चढ़े सुवाया।

ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावै धाए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ